0: film to release in absolute ages.
1: This is Sunrise Radio.
2: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहि

एक घोड़ा सुना क्या लड़की बोला बात में बहुत दम है छाती ठोक ठोक के बोला।

क्या आपके बच्चे के सारे वैक्सीनेशंस अप टू डेट हैं? चाइल्डहुड वैक्सीन्स आपके बच्चे को मीजल्स, वूपिंग कॉफ और दूसरी सीरियस इन्फेक्शंस से बचने में मदद करते हैं। ये वैक्सीन्स लाखों बच्चों को दुनिया भर में दिए जा चुके हैं और इनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके बच्चे का कोई वैक्सीनेशंस मिस हो गया है तो फिक्र ना करें, अपनी जीपी प्रैक्टिस से बात करके कैच अप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अपने बच्चे की रेड बुक चेक करें और इंश्योर करें कि उनके वैक्सीनेशंस कंप्लीट हैं। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations। अपने बच्चे को बेहतरीन हिफाजत दें, वैक्सीन्स वक्त पर लगवाएं। Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40. And the time now, 4:51. Amrit Tamaan and Gurlez Akhtar taking us up to the news and sport headlines at 5. Back on the other side for hour 2. And so many more great tunes.